पटक बैग अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

0: बखार के आना खुले है कि मूस आए तो अब मूस हेरा सपबो आई सकत है।
1: ओहो हाँ तो सही है, याद हुई गवा घर के आसपास झाल झुंगा बढ़ के बहुत बड़ा हुई गवा है, काटे रहा।
0: हाँ ऐसा करा जाए तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलकर सब सफाई करे के हुई और आसपास के फोहर व्यवस्थापन करे के हुई ना।
1: होत है ऐसा समय पर तो बड़बार घास फूहर गंदगी रहा जगह पर सांप लुकाई के बैठा हो सकत है ना।
0: वही से तो कही थे बिटिया समीरा बेटवा विवेक तोहरे सब और हम मिलकर घर के आसपास रहा बड़वार घास काट दिया जाए, काल लाई गवा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कर दिया जाए, डेहरी के आना सांप मूस न हले के में से मरम

0: काहे की बरसात के समय है, आसपास साफ हो सकत है। टॉर्च के अंजोर से साफ दिखाई दे है और डंडा के टक टक आवाज सुन के भाग जे है।
1: हाँ बेटिया, तू कितना बढ़िया सलाह दी हूँ।
0: अम्मा, हमरे का स्कूल में मैडम सर लोग सांप लुकाए सके वाला जगह के आसपास से चले पड़े या काम करे पड़ा तो हमेशा होशियार होए के चाहिए कह के सिखाए है। और धान खेत झाड़ी

0: पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौ।
1: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौ।
2: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
0: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
2: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौं।
1: सुन्नुहोस् त,
0: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
2: अनुरोधक भिरीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सिद्धगंगा नगरपालिका अर्घाखाँची, अध्यक्ष नारायण पौडेल।
3: नरेश भैया, आपके फोन आवे के बाद हम दौड़ के चली आए। भौजी कहाँ हिन?
4: वही खटिया पर सूती हिन बहिनी, वहारे चला जाए ना।
3: भौजी आपका कहाँ डसीली? घर के आसपास साफ सुघर रखा गया है, तब वो आपका सपोर्ट डसीली।
5: हाँ बहिनी, यही एरिया से ऊपर दसिस है। आपके भैया एम्बुलेंस का खबर तो कहीं है, पता नहीं कब आई।
3: ना घबरा वगैरह भौजी, हमरे साथ में हन, आपका कुछ नहीं हुई।

0: कार्यवाही अगाडि बढाऊ।
1: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
0: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
3: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
1: अनुरोधक
4: समय छन् सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बुद्धभूमि नगरपालिका 3 कपिल वस्तु, अध्यक्ष धर्मराज गहिरे, सम्पर्क नम्बर 98472888185।
5: हाँ आइगेन, साफ दस लिए बीमारिया का धीरे धीरे लाए मिलक तो बढ़िया रहा।
6: अच्छा अच्छा एक छिन, हमरे सहयोग कई के लावा जाते बल्कि मोटरसाइकिल घुमाई के यहाँ करा जाए।
5: होत है। अच्छा, बीमारिया का धीरे धीरे हमरे पीछे बैठावत जाए और एक जने बीमारिया का पकड़ के बैठा जाए, उपचार केंद्र तक पहुँचावत के बीमारिया बेहोश हो सके के नाते पीछे से बैठे वाले व्यक्ति का पकड़े रह के चाहिए।
7: बीमार व्यक्ति का सुरक्षित हो के मेर पकड़ के बैठवे। सुनील जी, आप जैसन मोटरसाइकिल स्वयं सेवक के कारण सर्पदंश के बीमार व्यक्ति का उपचार केंद्र ले जाए के सहज भावा है।
5: एम्बुलेंस और चार चक्का वाला सवारी के तुलना में मोटरसाइकिल सब जगह पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। कितना जगह पर तो हमरे जैसा मोटरसाइकिल स्वयंसेवक लोग हैं। आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो पाए वाला बीमारिया का चार चक्का वाले सवारी साधन में सहज हुए के मेर से सुताई के नक्चेरे के एंटी वेनम भवा उपचार केंद्र में ले जाए के चाहिए।
6: अच्छा अच्छा, आप लोग जावा जाए, हम पल्ला बंद करके आई थे।
5: इनका डस लिए साहब के फोटो खींच लिया गया है तो वो लेके आवा जाए, साहब के पहचान हो जाए और उपचार करत के आसान हो।
7: फोटो हमरे मोबाइल में है, अब हमरे चला जाए, नहीं तो देर हो जाए।
8: सांप डस लिए पर उपचार के खातिर मोटरसाइकिल चालक या मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग लिया जाए, बीमारिया का अपने और मोटरसाइकिल चालक के बीच में सुरक्षित हुए के मेर से रखा जाए और नक्सरवे के एंटी वेनम उपलब्ध हुए वाले सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जावा जाए। सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल चालक का बुलावा जाए, नक्सरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुंचावा जाए, जीवन रक्षा करा जाए।
9: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जात है।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: के भयो तपाईँ? छोरीलाई भुकेर आएको छौ त।
1: हेर्नुहोस् न काका, छोरी फुल टिप्न बारीमा गएकी थिइन्, सर्पले टोकेछ, विष निकालिदिनुहुन्छ कि भनेर लिएर आएको।
0: सर्पले टोकेको विषको उपचार गर्न त सर्पदंश उपचार केन्द्रमै लैजानुपर्छ कमल। त्यहाँ दक्ष तथा तालिम प्राप्त चिकित्सकहरूले विषालु सर्पले टोकेको हो कि होइन पत्ता लगाएर सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभेनमबाट उपचार गर्छन्।
1: सर्पदंश उपचार केन्द्रको बारेमा मैले पनि सुनेको त हो, तर
0: सर केही होइन, छोरीलाई तुरन्त उपचार केन्द्रमा लगिहाल। नेपाल सरकारले सर्पदंशको उपचार तथा एन्टिभेनम समेत निशुल्क उपलब्ध गराउँछ, खर्चको पनि चिन्ता लिनु पर्दैन।
1: छोरी नाति है, तिमीलाई केही हुँदैन, म एम्बुलेन्सलाई फोन गरिहाल्छु,
0: एम्बुलेन्स आइपुग्न समय लाग्न सक्छ। मेरो छोरो सन्देशले मोटरसाइकलमा राखेर तिमीहरूलाई उपचार केन्द्र लगिदिन्छ। बाबु सन्देश, तयार भएर छिट्टो बाहिर आऊ त।
2: सर्पदंश प्रभावित जिल्लाहरूमा बिरामीहरूको समयमै उपचार गरी ज्यान जोगाउने उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशको उपचार निशुल्क हुन्छ। सर्पको टोकाइले मानिसको मृत्यु नहोस् भनेर सरकारले सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो नजिकै रहेको सर्पदंश उपचार केन्द्रको सम्पर्क नम्बर साथमै राख्नुपर्छ।
3: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डलेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
6: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
7: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
8: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
6: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
8: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौं।
7: सुन्नुहोस् त,
6: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
9: वन डडेलो रोकौं, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौं।
8: अनुरोध
6: अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, लुम्बिनी साझेदारी वन उपभोक्ता समूह भैसाई रूपन्देही। सम्पर्क नम्बर 98472185750।
5: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
6: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
7: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
8: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
6: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
8: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौं।
7: सुन्नुहोस् त,
6: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
9: वन डडेलो रोकौं, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौं।
8: अनुरोध
6: अध्यक्ष दीपक थापा, खोजीपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाढगंगा 9 जिनुवा कपिल वस्तु। सम्पर्क नम्बर 98475092531।
5: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
6: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
7: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
8: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
3: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
8: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौं।
7: सुन्नुहोस् त,
3: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
9: वन डडेलो रुकाउँ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौं।
8: अनुरोध
10: मुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारगंगा दुई गब्देया अध्यक्ष कुशल बहादुर थापा सम्पर्क नम्बर 98254-14-296।
11: का हो गए कमल, बिटिया के लेके आए हो?
12: देखा जाए ना काका, बिटिया फूल लोड़े फुलबारी गई रही, सांप डस ली है, बिख निकाल दिया जाए, यहीं से लेके आए हन।
11: साप डसी लिए बीख के उपचार करे के तो सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जाए के पड़ी कमल। वहीं दक्ष और तालीम प्राप्त चिकित्सक लोग बिखालू साप डसे है कि नहीं पता लगाई के सर्पदंश उपचार में प्रयोग होए वाला एंटी भेनम से उपचार करत है।
12: सर्पदंश उपचार केंद्र के बारे में तो हमू सुने हन, लेकिन
11: नहीं बिटिया का तुरंत उपचार केंद्र में लेके चली जाओ। नेपाल सरकार सर्पदंश के उपचार तथा एंटी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध करावत है, खर्च के चिंता नहीं लेके पड़ी।
13: बाबा
12: बिटिया न घबराओ, तू का कुछ नहीं हुई, हम एम्बुलेंस का फोन करी थे।
11: एम्बुलेंस आवे के समय लाग सकत है, हमरे बेटवा संदेश मोटरसाइकिल पर तुमका उपचार केंद्र पहुँचाई गयी। बाबू संदेश तैयार होके जल्दी आओ। तो
14: सर्पदंश प्रभावित जिला सब में बीमरिया लोग के समय पर उपचार कई के जान बचावे के उद्देश्य से सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में है। यह उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार मुफ्त में मिलत है। सांप की डसाई से आदमी के मौत न हुए के खातिर सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होने वाला एंटीवेनम निशुल्क उपलब्ध कराया है। अपने नजदीक रहा सर्पदंश उपचार केंद्र के संपर्क नंबर साथ में रखे के चाहिए।
15: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: हाँ हाँ आ गेल साफ दस लिए बीमरिया का धीरे धीरे लाए मिले तो बढ़िया रहा।
1: अच्छा अच्छा एक छीन हमरे सहयोग कई के लावा जाते बल्कि मोटरसाइकिल घुमाई के इधर करा जाए।
0: होत है अच्छा बीमरिया का धीरे धीरे हमरे पीछे बैठावा जाए और एक जने बीमरिया का पकड़ के बैठा जाए उपचार केंद्र तक पहुँचावत के बीमरिया बेहोश हो सके के नाते पीछे से बैठे वाले व्यक्ति का पकड़े रह के चाहिए।
2: बीमार व्यक्ति का सुरक्षित हो के मेहर पकड़ के बैठवाई। सुनील जी आप जैसन मोटरसाइकिल स्वयं सेवक के कारण सर्पदंश के बीमार व्यक्ति का उपचार केंद्र ले जाए के सहज भावा है।
0: एम्बुलेंस और चार चक्का वाला सवारी की तुलना में मोटरसाइकिल सब जगह पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। कितना जगह पर तो हमरे जैसे मोटरसाइकिल स्वयंसेवक लोग हैं। आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो पाए वाला बीमरिया का चार चक्का वाले सवारी साधन में सहज हुए के मेर से सुताई के नक्चेरे के एंटी वेनम भवा उपचार केंद्र में ले जाए के चाहिए।
1: अच्छा अच्छा आप लोग जावा जाए हम पल्ला बंद कई के आई थे।
0: इनका डस लिए साहब के फोटो खींच लिया गया है तो वो लेके आवा जाये साहब के पहचान हो जाये और उपचार करत के आसान हुई।
2: फोटो हमरे मोबाइल में है अब हमरे चला जाए नहीं तो देर हो जाए।
3: सांप डस लिहे पर उपचार के खातिर मोटरसाइकिल चालक या मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग लिया जाए बीमरिया का अपने और मोटरसाइकिल चालक के बीच में सुरक्षित हुए के मेर से रखा जाए और नक्चरवे के एंटी वेनम उपलब्ध होए वाले सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जावा जाए। सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल चालक का बुलावा जाए नक्चरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुंचावा जाए जीवन रक्षा करा जाए।
4: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउन का साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: युनाइटेड अस्पताल बारगंगा साथ ठाकुरापुर कपिल वस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नया सुविधाहरू।
7: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आन्द्राको समस्या कलेजो थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
6: हाड जोड्नी नसा तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्नी सम्बन्धी समस्या हड्डी भाँचिएको रजहरू राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बाथरोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ। वरिष्ठ फ्यामिली फिजिसियन तथा जीपी सर्जन डाक्टर पूर्ण बहादुर घरतीद्वारा विशेषज्ञ सेवा सहित मेजर तथा माइनर अपरेशनहरू पाठेघर खाल्ने चिरेर बच्चा निकाल्ने नर्मल डेलिभरी सेवा एपेन्डिसाइटिस हाइड्रोसिल हर्निया पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्ने लगायतको साना तथा ठूला अपरेशनहरू वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा अन्य ओपीडी सेवा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म डाक्टर योगेन्द्र थापाद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा।
7: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु सम्पर्क 076550200 मोबाइल नम्बर 98575158138।
6: अब ढुक्क हुनुहोस् विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।
8: सूचना निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना
9: नवीन निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना
8: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नबिल बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नबिल निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
9: मिति 2083 वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म
8: स्थान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ।
9: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू।
8: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने,
9: पोलेका कारण हात खुट्टाका औंलाहरू टाँसिएको,
8: पोलेर टाउको कपाल घुमेको,
9: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका,
8: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औंला भएका वा पैतला भित्र फर्किएका।
9: विशेषता,
8: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
9: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला।
8: विस्तृत जानकारीका लागि 9853500076 अथवा 9840523555।
10: ल है म आइपुगे। सर्पले डसेको बिरामीलाई बिस्तारै आँगनमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो।
11: एकैछिन है, हामी सहयोग गरेर ल्याउँदैछौ। बरु मोटरसाइकल फर्काएर राख्दै गर्नुहोस् न।
10: हुन्छ हुन्छ, ल बिरामीलाई बिस्तारै मेरो पछाडि बसाउनुहोस् अनि एकजनाले बिरामीलाई समातेर बस्नुहोस्। उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउँदा बिरामी बिहोस हुन सक्ने भएकोले पछाडिबाट समातेर बस्नुपर्ने हो।
12: बिरामीलाई सुरक्षित हुने गरी म समातेर बस्छु सुनिलजी। तपाईँ जस्ता मोटरसाइकल स्वयंसेवकका कारण सर्पदंशका बिरामीलाई उपचार केन्द्र लैजान सजिलो भएको छ।
10: एम्बुलेन्स र अरू चार पाङ्ग्रे सवारीको तुलनामा मोटरसाइकल सबै ठाउँमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ। कति ठाउँमा त म जस्ता मोटरसाइकल स्वयंसेवकहरू पनि छन्। सजिलोसँग र छिट्टै उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा बिरामीलाई चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा सजिलो हुने गरी सुताएर नजिकैको एन्टिभेनम भएको उपचार केन्द्रमा लैजानुपर्छ।
11: तपाईँहरू जाँदै गर्नुहोस् है, म ढोका लाएर आइहाल्छु।
10: ल, उहाँलाई टोकेको सर्पको फोटो खिच्न भ्याउनु भएको छ भने त्यो पनि ल्याउनु होला है। सर्पको पहिचान हुन्छ र उपचार गर्न सजिलो हुन्छ।
12: फोटो मेरो मोबाइलमा छ, अहिले हामी गइहालौँ, नत्र ढिलो हुन्छ।
13: सर्पले डसी हालेमा उपचारको लागि मोटरसाइकल चालक वा मोटरसाइकल स्वयंसेवकसँग सहयोग लिनुहोस्। बिरामीलाई आफू र मोटरसाइकल चालकको बीचमा सुरक्षित हुने गरी राख्नुहोस् र नजिकैको एन्टिभेनम उपलब्ध हुने सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लगिहाल्नुहोस्। सर्पले टोक्दा मोटरसाइकल चालक बोलाऊ, नजिकैको सर्पदंश उपचार केन्द्र पुर्याऊ।

को अवसर में ईसीएल का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉर्ट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एवियल मैटिक एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता ग्लोबल नंबर 1 टीसीएल इंस्पायर ग्रेटनेस